उज्ज्वल चंद्रानन शोभे, स्वामी समाधि लगाए त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय जय जय महादेव। नीलकंत भक्तन हित तुमने विष का पान किया, तुमने विष का पान किया। असुरों को संहार के जग का त्राण किया। ओम जय जय जय महादेव। बोलिए उमापति महादेव सदाशिव भगवान की जय। As we listen to our bhajan at this time,

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

क्या दशा की प्रभु रामचंद्र की, दुष्ट रावण में सीता मैया को हर न कर ले। अब काऊ बता करेंगे सीता मैया को। हाँ, राम भक्त हनुमान थे, वो ही समुंदर राम कर पाएंगे।

अरे इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं।

की जय। दिस भजन सेंट्रलाइजेस ऑन भक्ति। भक्ति सिंपली मीन्स हैविंग अनकंडीशनल लव फॉर द फीट ऑफ भगवान विदाउट अ मोटिव। कैन यू इमेजिन भगवान श्री राम इन इस बालक रूप, इन इस चाइल्ड लाइक फॉर्म, इन इस सिटी ऑफ अयोध्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सेज स्टेप बाय स्टेप श्री राम वॉक्स टू द पैलेस विद द घुंघरूज अटैच्ड टू हिज फुट, टू हिज बोथ फीट, मेकिंग अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। द लॉर्ड ही लाफ्स, ही रन्स अवे, ही फॉल्स डाउन, ही स्टंबल्स, प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ अयोध्या। हिज मदर कौशल्या मा वुड रन एंड पिक हिम अप विद लिप्स लाइक द सन, स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड्स एंड ट्राइंग टू टॉक, having a most wonderful nose with his curly beautiful hair. He's being fed by his mother Kaushalya. Goswami Tulsidas ji says in this beautiful bhajan, there is nothing in this world as fulfilling as listening to katha with Shri Ram in his balak roop.